एक शफ़क़त और मेहरबानी की दास्तान, नेकी का जिन्याती कोट। अस्सलामु अलैकुम सामीन, तसव्वुर कीजिए कि आप एक जदीद शहर में चल रहे हैं। जब आप सर उठाते हैं तो आसमान को छूती हुई बुलंदों वाला इमारतें नजर आती हैं, कदमों के नीचे फैली सड़कें और आसपास से हवा की तरह गुजरते हुए अजनबी चेहरे। लेकिन क्या इस अजीम शहर, इस माशरे और इस निज़ाम को कायम रखने वाली चीज़ सिर्फ कंक्रीट की सख्ती और फौलाद की ताकत है? किसी भी माशरे की असल बुनियाद इसके ताकतवर अफराद के वजन से नहीं, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि वो अपने कमज़ोर तरीन अफराद की किस तरह हिफाजत करता है। तुर्किया में फिलाही इदारों की बात करना सिर्फ तंजीमों की इमारतों या अतियात की रसीदों की बात करने तक मफहूम नहीं रखता। दरहकीकत ये हज़ारों साल पर मुहित एक खामोश इंसानी जदोजहद और बका की दास्तान है। कुछ माशरों को सिर्फ कवानीन और सरहदें एक साथ नहीं रखती, इन्हें एक ऐसा गैर मरई मगर फौलाद से ज़्यादा मजबूत रिश्ता जोड़े रखता है जिसे हम ज़मीर का हाफ़िज़ा कह सकते हैं। जिसे आज की दुनिया समाजी जिम्मेदारी कहती है, हम उसे सदियों से जान का कर्ज समझते चले आए हैं। इस माइक्रोफोन के सामने आइंदा 26 हफ्तों तक हम इस सरजमीन के बावकार तरीन चेहरे यानी हमारे फलाही इदारों और इन फलाही इदारों को कायम रखने वाली अजीम रूह के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हम माजी के वर्से को आज के इम्कान के साथ में

लाकर मुस्तकबिल की उम्मीद में तब्दील करेंगे। प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी में खुश आमदीद। जड़ें, देहातों का मुश्तरका दस्तरखान और इमदाद बाहमी का असूल। तारीख की किताबें अमूमन जंगों के शोर और फतूहात की शान बयान करती हैं, मगर असल मोजज़ा इन खामोश लम्हात में पोशीदा होता है जब लोग एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हैं। हमारी कहानी बहुत दूर वस्ती एशिया के सख्त और कटीली हवाओं के साथ शुरू होती है। मुस्तकिल आबादियों के क्याम से पहले तुर्क अकवाम की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा एक लफ्ज़ में सिमट जाता था और वह लफ्ज़ था इमदाद बाहमी। ये सिर्फ मिलकर काम करने का नाम नहीं था, बल्कि किसी दूसरे की कमी को अपनी कमी समझने का नाम था। इन दिनों में जब जिंदा रहने का वाहिद रास्ता हम बनकर जीना था, यही रूह परवान चढ़ी। अगर किसी का खैमा गिर जाता तो पूरी बरादरी जमा हो जाती और सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो खैमा दोबारा खड़ा हो जाता। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये बकाए बाहमी का एक मुआहदा था। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर एक फ़र्द कम हुआ तो पूरी बिरादरी कमज़ोर पड़ जाएगी और इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। जब हम अनातोलिया पहुँचे तो यही रूह अखियत यानी भाईचारे के निज़ाम में एक मजबूत नज़्म व ज़ब्त की शक्ल इख्तियार कर गई। अखियत सिर्फ ताजरों की एक अंजुमन नहीं थी, ये ज़िंदगी का एक मकसद था। इस निज़ाम में एक ताजर सिर्फ सामान बेचने वाला शख्स नहीं था, वो ऐसा दरवेश भी था कि अगर इसे इल्म हो जाता कि इसका पड़ोसी दुकानदार इस दिन बोहनी यानी पहली फरोख्त नहीं कर सका तो वो अपना गाहक इसके पास भेज देता था। ज़रा सोचिए, आज की सख्त मुसाबकती दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मुनाफे से ज़्यादा अपने हरीफ की भलाई को अहमियत देते हों। यही वो मजबूत इखलाकी बुनियाद है जिस पर आज हमारे अजीम फलाही इदारे कायम हैं। वक्फ की तहजीब, नेकी का कानूनी रूप। वक्त गुजरता गया और यही रूह उस्मानी दौर में एक अजीम वकूफ़ी तहजीब में तब्दील हो गई। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सिविल सोसाइटी तंजीमों में से एक थी। वक्फ का मतलब ये था कि ज़ाती मलकियत को अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाए, यानी मेरा को हमारा बना दिया जाए और इसे हमेशा के लिए खैर के रास्ते में लगा देना। 16वीं सदी में इस्तांबुल आने वाले एक गैर मुल्की सयाह ने हैरत से लिखा, यहाँ कोई शख्स अगर पैसे ना भी रखता हो तो भूखा नहीं रहता और ना ही सड़क पर सोता है, क्योंकि हर मोड़ पर किसी न किसी वक्फ का दरवाज़ा मौजूद है। पुराने शहरों की तामीर में भी यही रूह नज़र आती थी। किसी महल्ले की बुनियाद रखी जाती तो सबसे पहले इबादतगाह, फिर लंगरखाना, मदरसा और शफाखाना तामीर किया जाता। इन सब को रियासती ख़जाने से पहले अवामी वक्फों के ज़रिए चलाया जाता था। लोग वक्फ के घरों में पैदा होते, वक्फ की लाइब्रेरियों में तालीम हासिल करते और आखिरकार वक्फ की ज़मीनों में सुकून पाते। मदद ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि खुद ज़िंदगी थी। ये तहजीब इतनी हसास थी कि इसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हर जानदार को अपने पास एक इमानत समझा। 1889 में बुरसा में कायम होने वाला गुरबा खाना लाकलाकान दुनिया का पहला जानवरों का अस्पताल था। क्यों? क्योंकि हिजरत के दौरान ज़ख्मी होने वाले सारसों और सर्दियों में भूखे रह जाने वाले जानवरों को भी एक इमानत समझा जाता था। फितरत को इस्तेमाल की चीज़ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा जाता था। आज के माहौलियाती और हैवानाती हकूक के इदारे दरअसल इसी गहरी रवायत के वारिस हैं जो सदियों पहले वक्फ नामों में लिखी जा चुकी थी। और सिर्फ यही नहीं, गर्मियों में ठंडा पानी तकसीम करने वाले वक्फ मौजूद थे। ऐसे वक्फ भी थे जो नौकरों से टूट जाने वाले बर्तनों का मुआवजा अदा करते थे ताकि इन्हें डांट ना पड़े और इनकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। जिसे हम आज नफ्सियाती फलाह कहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने इसे सदियों पहले फलाही खिदमत का हिस्सा बना दिया था। लिहाजा आज जब हम फलाही इदारों की बात करते हैं तो सिर्फ माली इमदाद की नहीं बल्कि इस लतीफ़ रूह और इंसानी वक़ार की हामल मईशत की बात करते हैं। जदीद दौर और जमहूरिया की शफकत भरी मीरास। 19वीं सदी के इख्तिताम पर जदीद दुनिया के साथ साथ इमदाद और फलाह का निज़ाम भी ज़्यादा मुनज़्ज़म और वसी होता गया। जंगों, वबाओं और हिजरतों से थकी हुई इस सरजमीन में हमदर्दी की एक मजबूत कड़ी वजूद में आई जिसका नाम था दारुल इज्ज़ा। इसके दरवाजे पर सिर्फ एक शर्त लिखी थी, इंसान होना काफ़ी है।
اس کے دروازے مذہب، زبان اور نسل کی تفریق کیے بغیر ہر شخص کے لیے کھلے تھے۔ اسی دور میں ہلال احمر تنظیم، آج کا ریڈ کریسنٹ، محاذوں پر خون اور دوا لے کر پہنچی اور مشکل ترین اوقات میں قومی یکجہتی کی علامت بن گئی۔ جب جمہوریہ قائم ہوئی تو رحمت کی یہ عظیم میراث ریاست کے اصولوں میں فلاحی ریاست کی صورت میں شامل ہو گئی، یعنی امداد اب صرف خیرات نہیں بلکہ شہریوں کا حق اور ریاست کی ذمہ داری بھی بن گئی۔ لیکن عوامی جذبہ کبھی مان نہیں پڑا۔ آج ترکیے میں سرگرم ہزاروں فلاحی تنظیموں کے جنیاتی تجزیے کیے جائیں تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں دیہی زندگی کے وہ اجتماعی روح، وہ درویش تاجر اور وہ لوگ ضرور ملیں گے جو زخمی سارسوں کے بارے میں بھی سوچتے تھے۔ ہماری کہانی دراصل یہ نہیں کہ ایک ہاتھ دیتا ہے اور دوسرا اس کی داستان سناتا ہے، بلکہ یہ کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو چھو کر اس کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے۔ اس تہذیب کے وارث ہم ایسے لوگ ہیں جو روٹی بانٹنے کی برکت سے پروان چڑھے ہیں اور جس نے بھوکے پڑوسی کے ہوتے ہوئے سونا اپنے لیے باعث شرم سمجھا ہے۔ سامعین، پروگرام کی اس پہلی قسط کے اختتام پر آئیے خود سے ایک سوال پوچھیں۔ کیا ہمارا اصل ورثہ ہم صرف عمارتیں ہیں یا یہ رحمت بری زبان اور انسان دوستی کی روایت؟ آج ہم نے صرف ایک ریڈیو پروگرام کا آغاز نہیں کیا بلکہ دلوں کو جوڑنے والے ایک پل کا پہلا پتھر رکھا ہے۔ ہم نے آج یہاں دلوں کے درمیان بننے والے پل کا افتتاح کیا ہے۔ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔

जिसने ईसाइयों की पहली काउंसिल की मेज़बानी की जो कि इज़निक के नाम से मशहूर है और जिसकी आलमी शोहरत याफ्तर टाइलें भी हैं। नस्ली खान देहरमीन जी ओलू के कलम से तहरीर करदा यह प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।